0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियां या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद साकी से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से दादी बाबा के संग माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: हाँ, याद आती तो है लेकिन सब तो गुजर गया
0: जी।
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है, वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसा पीछा का टाइम पीछा बनाता था
0: जी,
1: सब्जी बनाता था
0: जी,
1: इस सभी माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया हुआ?
1: हाँ, माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास हम बहुत तरीका तरीका खाना बनाने सीखे।
0: अच्छा।
1: और हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना आपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था
0: जी,
1: कोई चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और 1 बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है
0: जी।
1: और जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना
0: जी, जी।
1: वो भी हम सुनते हैं। शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियाँ
0: जी,
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। मेरे एक वो कुत्ता था
0: जी,
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना
0: जी,
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए।
0: हाँ।
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो, सही बात है।
1: मेरा बच्ची भी अभी तक कुत्ता का बारी में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है, उसकी यादें तो दिल से कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थे हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई
0: जी,
1: लेकिन बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तब वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा।
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपने।
1: अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है। अभी
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना, सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है।
0: क्या बात है।
1: मैं दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना, तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता।

0: धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचने का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने।
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: बिजनेस भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: जी, खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना? जी। तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: मधु सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे
0: जी।
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे
0: गाँव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम।
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं मैडम, नरमा की कपास होती है।
0: अच्छा,
1: गेहूं भी होती है मैडम
0: जी, दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: जी मैडम।
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से,

0: कहानियाँ, कुछ सीख वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए
1: जी। दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं
0: जी,
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे
0: जी।
1: पापा भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल।
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो सीखे मैडम। आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते है मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाती हूँ मैडम आलू के परांठे।
0: क्या बात है। और सोनिका जी ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती है क्या आप?
1: नहीं मैडम मैं ये नहीं करती, जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम। हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम
0: जी।
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम।
0: सोनिका जी जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ। और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना
0: जी जी जी,
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ।
0: क्या
1: मैं कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी आपको कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: जी गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगे कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, ये यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ
0: जी। आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनार।
0: तो मिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम साले का

0: तहसील में रहते हैं
1: जी।
0: सालिकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
1: जी।
0: और हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
1: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
0: हमने खेत में धान बोया है मैम।
1: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
0: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
1: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
1: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
0: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसानी का काम सीखे है
1: जी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
0: हाँ मैम।
1: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
0: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं।
1: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
0: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
1: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
0: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली
1: जी। क्या बात है,
0: मनचाहे गीत।
1: अच्छा,
0: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
1: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
0: हाँ मैम।
1: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
0: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ। हमें
1: बस

0: अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है।
1: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
0: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
1: जी जी जी, यानी कि आप शॉप पे काम करती है, तो बहुत अच्छी
0: बात। हाँ जी हाँ जी, विश्व भारती के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
1: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
0: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
1: क्या बात है, तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
0: पढ़ाई तो मैंने बीए सब कुछ किया हुआ है।
1: बीए और बीएड भी कर रखा है?
0: जी।
1: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
0: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
1: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है, है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी की फजा।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ, बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम।
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें एक भाई हैं
0: जी। तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ कुछ ऐसा?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना
0: जी,
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: के साथ।
0: लाख के कड़े होते हैं, जो
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग वगैरह लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम
0: जी।
1: कमीज होती है ना जो पहनने की
0: जी।
1: और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं, उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के।
0: क्या बात है, तो एक दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: जैसे मैंने 1000 फराकों में निशान लगाया तो मेरे 800 रुपए हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा अच्छा
1: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ।
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर।
0: अच्छा, खीर यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: कान की, दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ।
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता हाँ, होगा उसमें तो।
1: हाँ, चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे। हाँ।
1: आइए खिलाएंगे आपको पका के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं क्रांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा।
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं
0: जी।
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने।
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ, मन चाय की ताता शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा।
1: सुबह 6 बजे चालू करती है
0: जी,
1: तो अपना काम भी हो जाता तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके।
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत ये सब करते थे, मतलब वो खेलते थे, जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना
0: जी,
1: वो कबड्डी ये सब खेला करते थे।
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के खेल।
1: हाँ, रस्सी कूद है, हाँ, छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेलती हूँ
0: जी।
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप सीख जाओ, मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा।
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग एक खेलो खेल, तो उससे क्या होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा बनेगा। और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ हाँ जी जी जी जी हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी जी जी, उनके साथ तो यहाँ तो किसी मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे।
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना, तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना?
1: हाँ।
0: तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वो अलग गीत सुनना था दीदी, चलो आया है, माता ने बुलाया है
0: जी। सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ।
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है, फिर नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी जी जी। आप मंजरी जी बात कर रही है ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ।
1: जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना।
0: जी जी जी जी,
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी, बढ़िया है। आप सुनाओ, आपके मुंबई के क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ पे
0: जी,
1: तो दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जुनी की।
0: क्या बात है, फिर देखिए जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी जी जी,
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
1: हाँ वो उबाल के, वो दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छे लगते हैं वो बेर।
0: जी जी जी, और बबीता जी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी बेटी के ऊपर से।
0: सुनाइए।

0: यहाँ पे बीबीएस गाना गाया जाता है लोगों
1: ने। नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
0: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
0: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली।
1: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

ये कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, फोन नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867 02।

0: 9 8 6 7 0 2 8 8। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई